0: Sir. Utarta sedes katka pas sedes mi akal prakriksha mein sab log di raksha mein. Sarv kal ji di raksha mein sab log jadi sada raksha hamne. बल तल महीप जल तल महान जते प्रसोक निदान जग मग तेज पूर्ण प्रताप अंगज मिंजे जपत जा सातो आकाश सातो पताल विद्रु अदृष्ट जे कर्म जार मुस्तत संपूर्णं
1: स्वाक महला पहला पे पांडे साजे ना पे पूर्ण दे एक ने दत समय एक चले रहन चले एक ने हाली पैसा ने कुपर रहन खड़े तना सवार नान का जिनको नजर करे महला दूजा।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खुशां दे जकारे जावे, निहाल जावे, सत श्री अकाल।

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सतखंड दरबार दियां हाजरिया भरदे होए कीर्तन दे सत्कार संगता वाल बिनत मां हाजर होए जिस खजाने विच मां हाजर किते सत्संग जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जुखना सच्चे पातशाह जी महाराज देह रखता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

है गौण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी धनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खड ओ भौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी तेव करी आई पसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस पान ओ आहे विनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं।

मोदी गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव है पांचो संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी धरी गौरी गाव है आस

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हारी गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास करी करत है। गुकमट बास लग डोल दऊ दास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है।

रूड पीट तना कूड़ता को भेद पावे पूज तना ताहे जागे रखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल परिसाल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टा धारी सत्य सज बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पावन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमात शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या आदि ब्रह्मा से न वेद

कैसे छत्रधारी बड्ड अभिमान भोज दंड को करत है। दारस दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट फेस पोस दी अनेक दानी बावत है। शीश को कहा भयो मल्ल जो बिगाड़ अनेक दंड सो तो ना दंडौत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रोगी जो पे डर रहे उर्द मुख मानते न मुंड ने हो रायो आदेश को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को शीश पट कत जाके कान में खजूर दस मूड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक साओ आग को चरैया फल फूल को बछैया सद बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक साओ कहा भयो भेड़ जो खसत शीश बृछन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोक साओ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक साओ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे का।

बैरागी बन का बहु सन्यास भेष बन के दिखावई कहू बन हारी कहू बैठ लाए तारी कहू लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होई के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओ गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाकु ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है।

करीम सोई रास कर रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही कि सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देह राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश

गे, जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उन को करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज, के तक

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुअचार भूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी। त्वा प्रसाद भुजंग प्रयात छंद न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं।

खंड प्रतापादाच विभूतेन जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे दंडे असाधे न नेहं न गेहं स नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न वित्र सभूते भविखे भवान अचित्रे न रायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतं अभेखं न सत्रं न वित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनी अच्छयाद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय।

धर्मं न बर्मं न सर्मं न साके न परमं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पु

दैत बानी कहूं जा छकंदर बगे नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हों कहूं जोग विद्या धरे तापसी हों कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जच विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं मद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान

आख्या कहूं देव वाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शास्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबाणी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी

अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतबान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाव नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नाश, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल प्याल कट्यो न अंग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन शीत खाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बित

कई यज्ञ होत्र कई पौन आहार कई गर्द कूट मृत को आहार कई गर्द साग पै पत्र भक्ष नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सोभरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदब तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र तुचरत सुकरम न्यौली याद करम।

कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई जगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायतन अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन। त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगण जुह जुअंग भय कम्पह मेर पयाल भुअंग तप तापस सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र।

तीन जमीन जमाजे रचें सर्व मकी नमका जेह राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जे रचें छत्री छत्र सितं जेह राग न रेख न रोग बणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचेओ दस चार करी नवखण सचेओ रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद रगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभु जात न पात न जोत जुतं जे तात न मात न ब्रात सुतं जे रोग न सोग न भोग भुअं जे जंपह किन्नर जच जुअं नर नारण पुंसक जाहे किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांद गण भव भूत भविख भवान तुअं जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरा काश निवास चितंग रज रोजे कादेश चंद्र पृतंग दुध चंद

चिहन वर्ण है, अधिक से गभीक है, सजीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्वभरण है, जिमी जमान के विकय सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, लेखनाथ जानी है, सदीव सर्वठोर में विशेख अनमानी है, न जंत्र में न तंत्र में।

न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है।

जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है। सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोदा है। स्व प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग नारे।

रूप रेख नारंग जा को राग रूप नारंग सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आद देवा पाल दीन बंध प्रवीन श्री वज सर्व को करतार बरन चहन न चक्र जा को चक्र चहन आकार जात पात न गोत्र का

दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले थले मैं जब जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र ओम उपचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब कुंचकृत वे मुखचार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल जब चक्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सफा कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री

कहो सुसम का सो कह दम को कहाँ कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्व है तवन दोहरा कवन ऋष को पुष्ट है।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद वृते चरासुर मारण पति दोदारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रंभक वर्दन छत्र चिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप तेजंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र

चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंगण तुजा परंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हुसी मै का सुर मर्दन भूमा का तल उर्द अथे दामनी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता

कारण भाग बकारण शस्त्र प्रहारण साधमते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चाचर जमकारण चिच्छुर हारण धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणा संचंद प्रकाशन सूजर

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन।

दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले अष्टायुध बाहन भूल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो सी मय खा सुर मर्दन आद अनाथ अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल गा है।

दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो दसवीं बात जो

0: जे को जन्म मरण चेड़ रे जिस जन को प्रभ दरस प्यासा सगल पुरख में पुरख प्रधान आपस को जो जाने नीचा जहाँ का मन हुए सगल गिरी ना मन अपने ते बुरा मिटाना जन सम दृष्टिता
1: पाप नहीं ले पा
0: निर्धन को धन तेरो ना हो निमाने को
1: प्रभु
0: करण करामन हार स्वामी।

0: मन
1: बिरध ब्याह ऊपर साख से ये निर्गुण गुण कछु न बूझे जय प्रसाद तारू पर सुख बसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला जय प्रसाद भोगे सब रसा।

0: रतन त्याग कौड़ी संग्रचे
1: जो
0: छटना सो अस्थिर कर माने
1: छोड़
0: जाए जिसका सम करे चंदन रे पुतारे तोए अंधकूप में।

0: बिरख छाया सो रंग लावे
1: जो
0: दिसे सो चानन हार
1: बताऊ
0: सो जो लावे ने
1: मन
0: हर के नाम की प्री सुखदाई मिचिया तंदन कुटुम सबाया मिचिया राज जोबन तन मार
1: मिचिया
0: रथस्य सो वस्त्रा।

सिमरन बिन रैन बिर छाए गोविंद भजन बिन बिर चे सब काम तन तन ते जन जय गठव से हर नाओ रह तबर किच अवर कमावत जन

प्रसाद गृह संग सुख बसना जय प्रसाद रंग रसो जय प्रसाद पाठ परम भरावे जय प्रसाद सुख से सोई जे जय प्रसाद तू सब को माने जय प्रसाद।

0: प्रसाद तेरे सगले चीज राके
1: मनसाने प्राण ठाकुर प्राप्त
0: जय प्रसाद तुझको न पोचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे जय प्रसाद भूखन पैरी
1: मानते सम्राट के
0: जय प्रसाद सस्ते सुवारी
1: मानते को कबो नाम
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना
1: प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठा बैठा साथ
0: इसे त्याए

0: आप जपाए जपे सोना हो,
1: आप गाए सुहाए गुनगाओ,
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दयाते कमल विवास,
0: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए,
1: प्रभु दयाते मधुतम होए।

0: किसान मिटे अभिमान सात किसान बुझे प्रभ ने सात किसान पाए नाम रतन सात की महिमा बने कौन परानी सात के संग गोचर मिले
1: सात के संग सदा पाक ले
0: सात के संग आवे बस पंचा
1: सात संग
0: सब की।

0: सत्संग दुश्मन सब मी
1: साधो क्या संग आपने
0: सत्संग किसो नहीं बै
1: सात के संग ना बेगा पै
0: के संग नाई को मंदा
1: सात संग जाने परमानंदा
0: सात के संग नाई होता
1: सात के संग तजे सवा
0: आपे जाने साध बुढ़ाई
1: नानक साध रो बने आई
0: सात के संग ना कभू दावे
1: सात के संग सदा सुख पावे
0: संग बस गोचर रे
1: साधो के संग अरस है
0: सात के संग बसे थान ऊंचे
1: साधो के संग महल पहुंचे
0: सात के संग जुड़े सब
1: सात के संग केवल पार ब्रह्म
0: सात के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधो के कुलवा
0: सात के संग सब कुल उदारे
1: सात संग साजन ले कुटम ले सारे
0: साधु के संग सो तन पावे
1: ले तन ते सब को वसावे सात संग समुदाय करे सेवा
0: सात के संग सो
1: बासो देवा
0: साधु के संग पाप नयन
1: सात संग अमृत गुण गाए
0: सात के संग सर्व खान गम
1: नानक सात के संग सबा जरम
0: सात के संग नहीं किचका
1: दर्शन बेटा थोत निहार
0: सात के संग कलू खतहरे
1: सात के संग नरक पर हरे
0: सात के संग इयाऊ सुहेला
1: सात संग बिसत हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: सात के संग अमृत जावे
0: पार ब्रह्म साधी सुबसे
1: नानक कुदरे सात सुन रसे
0: सात के संग सुनो हर नाओ
1: सात संग हर के गुण गाओ
0: सात के संग न मन ते बिसे
1: सात संग सब पाने सरे
0: सात के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग गड़गड़ डीठा
0: सात संग बे आजा कारी
1: सात संगत पै हमारे
0: सात के संग मिटे सब रो
1: नानक सात बेटे संजो

0: ब्रह्मज्ञानी चबल कुचबल की रीना
1: आता रस ब्रह्मज्ञानी चीना
0: ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्मज्ञानी रेखा जुराना पया
0: ब्रह्मज्ञानी सदा

0: छिवा
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी संगेता
0: ब्रह्म ज्ञानी के हो चिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभा
1: ब्रह्म ज्ञानी का पढ़ पाता
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन पागी पाइए।

0: मरे को ऐसा
1: वैष्णो सोजी सुपर सो प्रसन्न
0: प्रसन्न के मायते होए बिना
1: कर्म करत होवे न कर्म
0: प्यासों का
1: काऊ फल की इच्छा नहीं बचे मन का अंतर सिमरन गोपाल
0: सब पर होवे
1: आपड़े अपने नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो राम
1: भगत।

0: चैन पाइए चरम
1: जिसके
0: मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सतराम
0: आत्म राम कृष्ण नजरी आया।

0: जैसा स्वरम जैसी उस माटी,
1: जैसा मैं जैसे बेखाते,
0: जैसा मान जैसा अभिमान,
1: जैसा रहता सारा जा,
0: जो बरताए साई जुगत
1: नानक पुरा कहिया जीवन
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
1: रखता साथ ना।

कोट भेज तीर्थवासी यही कोट भेज के श्रोते यही कोट आत्म ध्यान तारे यही कोट नवतन नाम ते आवे यही कोट पे अभिमानी यही कोट

कई कोट प्रभ को खोजन थे, कई कोट दर्शन प्रप्यास, कई कोट मांगे सत्संग, जिनको होया सो प्रसन्न।

0: तिवेन चावे
1: ज्योति पावे सोई होए
0: नानक दूजा भना कोए
1: प्रभु सत्संग ते पावे
0: उसा शांत बनावे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उसा स्थान का नहीं बिना।

0: वो लश्कर मानू कुपर करे
1: पर पिता ताका है बिना
0: सबते आप जाने ब्रह्मंत
1: के नए होए जाए बस मंत्र
0: कोट कर्म करे हो तारे
2: धर्म राय दिस करे सुहाए गुर प्रसाद जाका मिटे बिना
1: सोजन नाने दरगह पर
2: कोट कर्म करे हो तारे
1: चंपावे सब
2: अनित तपस्या करे हंकार
1: अनित तंकर आत्म में द्रवे आपस को जो भला कावे
2: सर्व किरे जा का मन होए जब लग जाने मुझे कछ होए
1: तब इसको सुख ना ही कोए
2: जब जाने मैं किछ करता।

0: सांके
1: दुखन सुख सब जाए
0: सांके दुखन अपने पाए
1: सांके दुखन मत होए मनी
0: सांके दुखन सब आते
1: सांके हते को रखे न कोए
0: सांके दुखन तान रस
1: सां कृपार कृपा जे करे
0: नानक संग नहीं लगे
1: सांके दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काल जे लवे
1: संतन के दुखन सर्व जोन पाए
0: सांके दुखन त्रिग जोन किरमाए
1: संतन के दुखन कृष्णा मै जले
0: सांके दुखन सब को चले
1: सांके दुखन ते सब जाए
0: सांके दुखन नीच निचाए
1: संदो की का था को नाए
0: नानक संग पावे तो भिगत पाए
1: संतन निंदक माताई
0: संतन
1: संत निंदक मां त्यारा
0: संत निंदक परमेश्वर
1: संत निंदक राज तहीन
0: संत निंदक दुखिया
1: संत निंदक को सर्व रोग
0: संत निंदक को सराबी
1: संत की निंदा दोख में दो
0: नानक संत पावे तो साबी
1: संत का दोखी सदा पवित्र
0: संत का दोखी किसे खाने
1: संत के दोखी को दान लागे
0: संत के दोखी को सब त्यागे
1: संत का दोखी मांगकारी
0: संत का दोखी
1: संत का दोखी जन्मे मरे
0: संत
1: के दोखी को ना ही उठाओ
0: नानक संत पावे ता नहीं मिला
1: संत का दोखी अज बीच टूटे
0: संत का दोखी किते कान नहीं भोले
1: संत के दोखी को ध्यान फरमाइए
0: संत का दोखी उजड़ पाए
1: संत का दोखी अंतर तेत होता संत के दोखी की जान किछ नाए
0: अपन भी जा पे
1: संत के दोखी को वर न रखन हार
0: नानक संत पावे ता नहीं
1: संत का दोखियों बिलाए
0: संत
1: का दोखी भूखा नहीं राजे
0: संत
1: का दोखी छुटे अकेला संत का दोखी धर्म तेरे
0: संत का दोखी संत मिथ्या
1: किरण निंदक कर तुरी पिया संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दोखी को दरगाह मिले
1: संत का दोखी सदा सहकाइए
0: संत का दोखी नाम रे नाच गाइए
1: संत के दोखी की पूजे ना आचा
0: संत का दोखी चले निराशा
1: संत के दोख न दृष्टे कोए
0: जैसा पावे तैसा कोए
1: दया कीर्तन में टेकोए
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब गढ़ किसके

0: किच नाही
1: जिसका हुकुम भूस होए
0: जिसका नारा कांत पर होए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नाना बेगाना लागे कोए
1: उस्तत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे साथ व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा से ना काला जियो
1: मनो पेक्षा कर का रंग चरण चलो मार्ग गोविंद कर हर कर्म स्वर्ण हर कथा
0: हाथ हर के नानक।

0: जैसा सा तैसा दिशा या
1: अपने कारज में आप समाया
0: सोद सोद सोद सीज
1: गुर प्रसाद दाता भुजा सब किछ मूल नानक तो सुखम सोया तो
0: मैं किछ जन्मे न किछ मरे
1: आपा चलता अपने करे
0: आमन जामन कृष्ण दृष्टि
1: आज्ञाकारी धारी सा चेता सगर में आप अनेक भगत आप अपना सीना ही किछ दंड दा अलख पे पूरा प्रताप जिन प्रजाता सु स्वभावंत प्रभ के सेवा सकल उद्धारन
0: आपे में कृपा
1: गुर का शब्द भय निहार
0: उनकी सेवा सोई लगे
1: जैसा के पाक रह बड़ पाक
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तेर पुरा को तम कर
0: जो कुछ करे सो प्रभ के रंग
1: सदा सदा बसे
0: सहस भय होवे सोए
2: करने हर क्षण सोए
0: प्रभ का किया जन मीठ लगाना
1: ऐसा साता साध
0: जिस जिस पे
2: समाए
1: ओए सुख निदान नो

0: सब कोई व्यापारी पारमिला व्यापारी
1: के
0: तो पियो
1: साथ को अपना जिया
0: साथ की दूर करो स्नान
1: साथ
0: सेवा बड़ भागी पाइए
1: साथ
0: अनेक बिगनते साथ दूर रखे
1: हर गुण गाया।

0: का नेत्र फूल
1: जिसका मंत्र जाने हो
0: अनुद्रुम मंगल सजा के
1: शरत रोशने गदा के
0: राज में राज जोग में जोगी
1: तप में पिसा रस में भोगी
0: जय जय पंक्ति सुख पाया
1: नानक इस पुरा का

0: नाना रूप नाना जाके रंग नाना बिकिनो विस्तार नाना चलत करे खिन माहे नाना बिकर बन बनाई सब घट किसके सब किसके ठाओ नाम के तारे सगले जन नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे आगास पदार नाम के तारे पुरिया सब भवन
1: नाम के संगुले
0: कर की पाजी सपने नाम लाए
1: नानक ज्योति पद में सौजन्यत पाए
0: रूप सज्जा का सत स्थान सज्जा की बाणी सत्कर्म जा की रचना सत सत्करणी निर्मल निर्मली सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास
0: सत वचन साधु उपदेश सत कीरत पूजे जे कोए आप सत किया सब सत जिसकी शिष्य करने करते कि मित्र न जाने किया
1: ज्योतिष पावे सोवती।

0: सत्सत सबदारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: सत्सत प्रभक्ता
2: दूजन हार को सत सब होए सत स्वरूप दे जिन मान्या जहाँ के लिए विश्वास प्रभाया ऐसे निर्भो होए बसाना बस माए ले बस गड़ाई जे भूजन हार विवेक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर के सेवक के मन प्रति
1: ठाकुर के सेवक के निर्मारे
2: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभा सेवक नाम के रंग
2: सेवक को प्रभ पालनहारा
1: सेवक के रखे निरंकार
2: सो सेवक जी दया प्रभ तारे अपने जन का पर्दा ढाके
1: अपने सेवा के सर पर रखे
2: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाए
2: अपने सेवक की आपत रखे प्रभ के सेवक को न पोचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया निकी कीरी मैं कल रखे जिसका सास न काटता मानस

0: सिक्की गुरदुर मत मली रे
1: और बचने का नाम
0: सतगुरु जी के बंधन काटे
1: और कासे बिगाते आठ
0: सतगुरु जी को नाम तन दे
1: और कासे वर भागे
0: है सतगुरु जी का हलत पलत सवारे
1: नाना सातो से को जी नाल समारे
0: गुरु के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुरु की आज्ञा मन में सहा
0: आपस को कर किचन जनावे
1: हर हर नाम हृदय सतगुरु
0: मन बेचे सतगुरु के पास
1: ते सेवा के कार रा
0: सेवा कर तो इन्हें कामी अपनी कृपा जिस आप
1: करे
0: बीस विश्वे गुरु का मन माने
1: सो सेवा परमेश्वर की
0: सो सतगुरु जी से दे अर ना हो शर्मदान जी का दाता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म न जाइए सफल दर्शन पेकत पुनीत पेटत संग्राम गुण रवे कर बचन करन आगाने रखो जाका मंत्र व्यंत कीमत नहीं पाए
1: पावे
0: एक उस्तत ने
1: सात पुरा पोरा
0: बाहु बोल न पोचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनिक भगत बंधन नित करे सत बलिहारी सतगुरु अपने ए हर रस पावे जन कोए पुरट का नाही कदे विनाश आठ पैर हर का नाम दे वो माया के संग न ले
1: मन में रखा हरा रे
0: अंधकार दीपक परगा से तपत माए ठाट वरताई जन्म मरण के मिटे अंधे से पोजू का निर्भो होए बसे जिसका साथिन कृपा तारी
1: नाम रारी

0: को बिघन लागे कोए करता ठीठा डारना
1: सेमा सेमा सदास पाओ
0: गोविंद से पूर्ण होए आ
1: पात पाए आ तम पर गाज
0: गर जाए बसे अवनासी
1: को नानक काटी जम फसे
0: सब विचार कहे जन साचा
1: चला मला सो का चो का

0: एको जपे को सलाहा
1: मारे को
0: एकस के गुनगा अनंत
1: मंतन जापे पावन
0: एको एके करा
1: पुरन पुर्य प्रभा
0: अनिक विस्तार एके पे
1: एक रात प्राप्त

0: जाचक जन जाचे प्रभान साजना की मांगो तू
1: पाप में सदा सदा
0: सदा प्रभ के गुण गावो
1: जल
0: कमल से लौट के प्री
1: भक्त करो प्रभ के निर्णय
0: एक कोटे को आधार
1: मांगे ना प्रसाद
0: प्रभ की दृष्टि।

0: मैं हर के
1: गुणगान भोग उड़ियाई
0: हर के नाम की कथा
1: वो भोजन का प्रसंगी
0: रसना जते हरानी
1: सुकरणी शोभा तनवंत
0: बसे पुरान हर मन।

जब इसका वरण चैन न जापत अपन आप पार ब्रह्म अपन खेर आप वर्ती जा जब ओवत प्रभ केवल तनी जब एक हर अगम पार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए जब आपे आप अपनी ज्योत रे अपन चरित्र करने हार अपना सी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अभिघात गोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे अपन आपा पिय चर जा यह निर्मल पूरक पूरक पत होता है यह निरंजन निरंकार निर्वाण यह स्वरूप केवल जगदीश।

पेच माया आपस को आपे आदेश एके एक एक भगवंता जय अपन आप पतियारा वो बयान तू चे ऊंचा जय आप जो परपंच का।

0: जातिस पावे ता शिशु पाए
1: अपे पाने रहे समाए
0: तुमते पिन नहीं किछोए
1: जगत पलाए
0: जाको प्रभु हाँ बुझाए
1: रचना

0: आप छोड़ बेनती करो
1: सासन
0: भजन के बलो भंडार
1: नानक गुरु पूरे नमस्कार सासन परमा।

सुखमणि सहज गोविंद गुणनाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए सब ते ऊंच पाए स्थान हर जनकार चले जन सोए।

नान जन तु पाए के संभाले सपना जिन करते ना किया चिंता वे करनेता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिद ब

0: ना
1: सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सुनना सु